0: धन्यवाद। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, शौहरत है, तेरे पास क्या है? मेरे पास माँ है। जय श्री। अब माँ के ऊपर कविता प्रस्तुत करने वाली है।
1: वह नहीं कर सकती अंग्रेजी में घिटपिट, खा नहीं सकती काटे चम्मच से खाना, नहीं कोई उसका पश्चिमी संगीत की समझ, अनजान है वह अंग्रेजी फिल्मों से, नहीं आता उसे SMS करना, अकाउंट नहीं है उसका फेसबुक पर, व्हाट्सएप के बारे में कुछ नहीं सुना उसने, तरीका नहीं है उसे बातचीत करने का, जीवन जीने का, कर सकती है तुम्हें शर्मिंदा कभी भी, तुम चाहो तो दूर रखो उसे, परिचय मत दो उसका, मत कहो किसी से कि वह तुम्हारी माँ है, पर कोई नहीं कह सकता कि वह नहीं जानती प्यार करना, ममता लुटाना, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि वह जैसी भी है माँ है।
0: धन्यवाद। अब हम आपके सामने एक रोमांटिक बॉलीवुड गाना पेश करने जा रहे हैं।

0: धन्यवाद। ये सुरीली आवाज सेजल, करिश्मा, अदिति, पायल, कृषाली की थी। अब आस्था आ रही है आप सब लोगों को हंसाने के लिए।
1: पहला चुटकुला दो पड़ोसन के बीच। पहली पड़ोसन ने व्हाट्सएप इंस्टॉल करने के बाद दूसरी को मैसेज किया, तुम्हारे पति की फोटो सेंड कर दो। तो दूसरी पड़ोसन मैसेज करते हुए कहा, क्यों, क्या अपने पति की सूरत से दिल नहीं भरा रहा? पहली पड़ोसन, अरे वो क्या है कि मुझे अपनी भाभी को जोक भेजना था, तो सोचा क्यों ना पूरा जोकर भेज कर ही सरप्राइज कर दूं। दूसरा चुटकुला संता बंता के बीच। संता किसी बीर बार में गया, उसने एक स्कॉच का पेग मंगवाया। पेग पीने के बाद अपनी कमीज की जेब में देखा और स्कॉच का एक और पेग मंगवाया। इसी तरह बार बार वो अपनी जेब देखता और स्कॉच का ऑर्डर देता। बार का एक वेटर ये देखकर परेशान हो गया। वेटर, दोस्त मैं तुम्हें पूरी रात शराब पिलाऊंगा, पर तुम मुझे बस इतना बता दो कि ड्रिंक मांगने से पहले अपनी जेब में क्यों देख रहे हो? संता, मैं अपनी पत्नी की फोटो को देख रहा हूँ, जब वो मुझे अच्छी दिखने लगेगी तब मैं समझूंगा कि अब घर जाने का समय हो गया है। तीसरा चुटकुला बंता और बेटा के बीच। बंता, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? बंता का बेटा, एग्जाम में पेपर खाली छोड़कर लास्ट में लिख देना कि हिम्मत है तो पास करके दिखाओ। चौथा चुटकुला शादी के कुछ दिन बाद संता अपने दोस्त बंता को बता रहा था। संता, मेरी बीवी इतनी मजाक करती है कि क्या बताऊं? बंता, कैसे? संता, कल मैंने उसकी आंखों पर हाथ रखकर पूछा मैं कौन, तो वो बोली दूध वाला। पांचवा चुटकुला एक लड़की पुल के ऊपर से छलांग लगाने वाली ही थी कि एक बाइक वाला उसके पास आकर रुका और बोला, अगर तुम सुसाइड करने जा रही हो तो प्लीज मुझे एक किस करने दो। वो लड़की तैयार हो गई, फिर लड़के को एक किस दी। लड़के को लड़की बहुत पसंद आई। लड़का, तुम सुसाइड क्यों कर रहे हो? लड़की, मेरे घर वाले को पसंद नहीं कि मैं लड़की बनकर बाहर घूमूं। मेरा नाम करण खन्ना है। छठा चुटकुले संता बंता इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स सीख रहे थे। संता, ओ जी तुम कल लड़की देखने गए थे, कैसी थी? बंता, रंग थोड़ा सा काला था और कान से भी कम सुनती थी। संता, जरा इंग्लिश में तो बताओ। बंता, ब्लैकबेरी थी। सातवां चुटकुला संता रिक्शा वाले से, हाँ भैया खाली हो? रिक्शे वाला, हाँ जी बिल्कुल खाली हूँ। संता, आओ चलो फिर ताश खेलते हैं। आठवां चुटकुला आज का ज्ञान, अगर आपकी जीएफ आपका मजाक भी सीरियस लेने लगे तो समझ लीजिए कि उससे कोई दूसरा मिल गया है, वो बस आपका बहाना ढूंढ रही है ब्रेकअप का। आखिरी और नौवां चुटकुला एक औरत सड़क पर गोद में अपने बच्चे को लेकर रोए जा रही थी, तभी वहाँ से संता गुजर रहा था। संता ने उसके रोने का कारण पूछा। औरत बोली, बच्चा बहुत बीमार है और दवा के लिए पैसे नहीं है। संता ने जेब से 1000 रुपए का नोट दिया और कहा कि जाओ जाकर दवाई ले आओ और बच्चे के लिए कुछ खाना और दूध भी ले लेना, बाकी जो बचे मुझे लाकर लौटा देना, मैं यही खड़ा हूँ। थोड़ी देर बाद औरत आई और 800 रुपए लौटती हुई बोली कि 100 रुपए डॉक्टर ने लिए, 60 रुपए का खाना और 40 रुपए का दूध आया है। संता बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि नेकी कभी बेकार नहीं जाती। डॉक्टर का फीस भी मिल गई, बच्चे का दवा दूध और खाना भी मिल गया और मेरा नकली नोट भी चल गया। धन्यवाद।
0: आशा है कि आप सब लोगों को आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। आपकी आरजे हर्षिता वी आप लोगों से अलविदा लेती हूँ। अगली बार इसी चैनल MOP कम्युनिटी रेडियो 107.8 पर वापस मुलाकात करेंगे।